हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: नव तक ते 8,90,621 वोटर वोट जो आईनी हक इस्तेमाल कंदा। नव तक ते पीपल्स पार्टी नवाज लीग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ऐं बिन सियासी ऐं आज़ाद उम्मीदवारनि समेत 208 उम्मीदवार मैदान में लथल। पाकिस्तान में तरसियल कश्मीरी मुआजरनि जी 12 सीटुनि ते बि पोलिंग अॼु थी रही आहे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे त मुज़फ़्फ़राबाद में अमुन अमान जी सूरत हाल नॉर्मल आहे। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम बि इंतिहाई सख़्त कया विया आहिनि।
6: पाबंदी मड़ियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ट्रुथ एंड रिकनसिलेशन कमीशन ते राज़ी थी वई आहे। एक्शन कमेटी जवाबी ख़तो माणींदी, पंहिंजूं तजवीज़ूं बि ॾेई छॾियूं आहिनि। हर क़ीमती जान ज़ाया थियणु क़ौमी सानियो आहे, अवाम खे तुर्त रिलीफ मिलणु घुर्जे। हिन वक़्तु पहिरीं तरजीह इहा आहे त मौजूदा बोहरान जे ख़ात्मे में मदद कई वञे। पीपल्स पार्टीअ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जो समाजी राब्तनि वारी वेबसाइट एक्स ते पैगाम। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ चयो त आज़ाद कश्मीर जे कानून साज़ असेंबली बि कमीशन जी मंज़ूरी ॾेई चुकी आहे। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म सां बि मशावरत कई वेंदी, इहो वफ़ाक़ी हुकूमत खां राय वठंदो। ख़बर पइजी सघंदी त तजवीज़ खे अॻिते वधाइण लाइ गॾियल बुनियाद मौजूदु आहे या न।
5: वज़ीर आज़म जे सलाहकार राना सनाउल्लाह जो पीपल्स पार्टी ते वाद। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मथां मुल्क टोड़े वज़ीर आज़म थियण जो इल्ज़ाम बि लॻाए छॾियो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ते बि तनक़ीद। मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राना सनाउल्लाह चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ खे चवंदा त सदाई दांदली करे वज़ीर आज़म थियो आहे त पोइ हिते हीअ ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो। वज़ीर आज़म जे वोटनि खे अवां फॉर्म 47 जो सॾींदा त ॿुधायो सदर खे मिलियल वोट कहिड़े फॉर्म जा आहिनि। ज़रदारी साहब जो ॿियो फर्ज़ चए रहियो आहे त सिस्टम ख़तम थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे। इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो फैन सिस्टम ख़राब लॻे थो, जेका अजीब ॻाल्हि आहे।
6: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी मुस्लिम लीग नून जे सदर नवाज़ शरीफ सां मुलाक़ात, मुल्क जी मजमूई सूरताल ते तफ़सीली ख़्यालनि जी ॾे वठ। वज़ीर आज़म आफ़ीस जे पधिराईअ मूजिबि रायवंड लाहौर में थियल मुलाक़ात दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ऐं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि मौजूद हुआ।
5: पीपल्स पार्टी सिंध वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी खां उहिदो छॾण जो मुतालबो करे

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
2: हर माह मुनाफा आमदनी में इजाफा बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
3: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलणु फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
4: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
3: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स